0: रेडियो।
1: करिश्मा जहांगीर हमारे साथ हैं, कैसे हैं जी? नमस्कार। चले जी, हम सभी के लिए गणपति जी से प्रेयर करेंगे। अभी वैसे भी बहुत सारे लोगों का जो